आओ संग रचा मुनिया गुलो तावुक संग हाबला सिने सिने शाल कामनी पांदा हो तीन ने शाल कामनी पांदा हो कॉक बोथमांग साइकलांग का वाला इशुक लाइक रे नुखुं क्लाई तोंग ना बागे संग तामो तामो क्लाई थाई सिने तोंग न केनर रोग जोतन करंग दी आंग कॉक दुप नंबर तेरे शाकले रेफरेंस 0381232 6253 खाई

0: बेथ' आंनि बाबु आंनि मा ब्रकनो खुंखायसानाय आं दैखानाय ब्रक कर'ना आंखि पेसारि सुगिया आरो बे आं बासावै बाहायखायो जाखं आंनि जाखं आं बासावै उलगदा बायमानो उलगदा मबाइल बायमानो आं थेखदो बिनिखायनो वान सुख मानि काहाबोखा आरो मा बुखानो अख' वालायमुं खालामना नांगिया आं गोजाखायनो ब्रक दंलायमोन थायो ओंखायो बिहि बायबो साय बरनि थानो बुजिलायमोन दङ जराबो मोजाङैबो मा थांनाय जिखिनबो बसायखिनबो आरो किसा बंनि मखल' बेजुवा नुखा ओंखाय आरो न किसा बोखाबो बंनि खामियाङै थांलाय आरो ओंखायनो बेखौ किसा थांनायबो न खा खामियानि बागै किसा वालायमानि बोखाखौ न लामा सोनानै जागै थाङाता आं बेखौ बुंलायो दा बागैनो फादानि जेफोरबो थांगोनखौ हाबैयो हाब्रब गोजान गोजानखै मा सानाय दामो ओंखायखाया लेंनै जाफायखाया बाहायखे फायखाया आब्रब दै
1: जरानो बुजिबो कक मा सानाय
0: हेदना नाम सोंनो नांनाय बना नांनाय गोजान गोजानखाय इनै दंसिनाय बन नोंथांसोले आंनै आहायखे आसो दैफेमि आं दाम खायथ' आं आहाय बगर सगर सायथ' आंखायबा
1: ককনো সঙ্গ মনোযোগ এফা বখারুই খানা নাই বোতামো সাই দাই আবনো কারে ইং

0: bebang no thung mawan sungnai thung bosa botoi bihik bosa nana thago enke bai ke ke bebang no thung wan sugoi sung thansa ke sung ma tong nai sang ni hin le bai nok no khung ke sang na ba ge nga ke sung joto no kha bu si lai nga nang nai he de ba bai enke ya bo no sung a ye bakha ufur ba ke sung tong lai ma lai ka ke nok no khung go ku no wa lai suk lai to wa shu shu tong na nyo he da no khung kha ka ka jo tong ma wa lai he enke ya bo no wa lai ma ni bishing te a bo no sung jo li ma ni iri ma ni bebang no sung mane kha jo li ma ni kiri ma ni to tong o ha ta no sung nok no khung go sung jo li ma ni bebang bu si kha ka sung tong ai ma nai ka he de ba ba e ya bo no nung ang tabu bakta tabu je kun jaga ra phan thanga dol bai thana ke je kun jaga thanga ti chiting ra phan de bak sa se angar ra khangai bela he de ba bai a phana le ama hasi bela hne ama hai hne changara thanglai yo ke e ya changara thanglai ma ni hai ke no sung ta ham ke sung bushi na nang na cha he de ba bai ano o borok bkha bai hinja bu khuwai chi mi se khono changara se thango ne chen to sai nam bla he de ba e e ama ke sung sai ma kha ke sung nok nu khung ga sung thanda suk shanti ke sung to ngai ma nai bai e abono anga sung sa chen bai bu nya ba zar ra chi na
1: la cha ham bai आउ नक नकों खाना थांगकां के सिंग पुलानो नकाशेवो सिनिजे दायित्व सिनिजे ख्लाइथाय रंग नसं बागै माना लायनाय दाबो बिहिकनि दायित्व नबो बिनि दायित्व नबो बखार वइनो बबो खायना नांनाय बसायबो बसायनि दायित्व न खायना नांनाय बसारबो बसारों दायित्व न आमहा के सिंग जानि जानि दायित्व न बुजिना खांके सिंग आबन सय सय के सिंग जारिमान खांकां के जारिनानि ब जायतु गुइतों खांकां के नक नखुं बहायनो दाय वालाय सुलाय फाइगलाक हेलो हेलो
2: अब जस गेट दिस
1: जरा तो पाइनने फाचिंग थांग थांग तंखा आउ नक नखुं खाना थांग के सङाबोनो खरकसा नाकार मुं शान के नंग बनो नाकारे रेनानि नांनाय ताय नंग ब जे बरक वाला सुलाइनि यागुलो नंग फिलिं खा जे आजागाव आं बेलाय नक बां कक छाइखिब जाका आम हाय तो मुं न जदि बखाव रुवाय मुं एबा फिल आम हाय जे चाया साक साक हाइमा तंग तंग हागे साक सांग न चिकन ता वान छुक दि नंग ताय खरकसा नि थांनि थांगै नंग आं बेलाय न कक गबां छाय खिप जाका आनो नाकार सिदि हिनेने अकक थाय जा साकां केनो नाय दि आ जे वालाय मुं आबो ताय माने आम हाय दै रिपीट इंगलाक एबा हामलाय ता दिन हामलाय मानु ने आं चंगुता गाय जरा तो पाइनो तंखा हाके कक दुख ताय या साखलिया गाय तेबिसे हाइनो हाय सिनि जतो करंग हरनाय ताय करंग हरिया तंगनाय बरकन जतन न आनि फाचिनते फुंका हाम ताय खा का हाम हामजाक माया फारो ताय जतन जानि जानि नक नखुंग नक नखुंगनि बरक बाय छालो किसिसा जराकारी वई जतन थांगजा खे सिं माय जानानि एबा आचुगै कक सालायनानि आम हायके जरा दिखलायना नांनाय गे जरा आम हायके सिं जरा किसा काटि खांगा गे सिं खरकसानि हामिया चाया अंगि तंगमारक नबो सिं सालायमानो गे खरकसानि चाया अंग तंगमारक खरकसानि तंगथक मुंतिनि तामंखा बा सापुंगो ताम खायनाय आम हाय सामुंरावनो सिं सोंलायि आचुगलायि सिं कक बागलायमानो इंखे अब हायकेनो सिं सिनि नुखुंनो सिं गोजां गोजां खे दनै मानो हेंगाय दिनैनि बागै आसुक नों सिदों आं नरकनि बुखुक तनु जा अरन बासा सिनाय तेवेसे जरा मांखे हाइन हाइ नरक बाय ग्रों फिरनाय अरन सिनि तिनि सालकामा पान्दान पारिसिनि जतन न खुलम बायगा

क्यों होता है, कहां होता है, यह भी तो पता नहीं चलता। मेरा चेहरा देखकर जुड़वा हूं, मुझसे नाराज ना हुआ करो।

कुलुंगा सरासा पॉइंट ऑफ मेगा हर से फे मुझे तो जतन न लाम शको फुंग का हम तेन रोक ने तीन निशाल जो तुनी बागे नो का हम लाइन ने थुन तबुक सीनियर स्टूडी ने जो रखो गो तामी तंगो फुंग ने दाम चिशा था मही शोते के संग गई मुफनी बाचे चार अंगजा गई चीनी तीन नि एलम क्रंग पांदा चिंग चेंगे नो रलाइन गई चिंग जतन सावी मानो एलम क्रंग पांदा हंके संग चीनी एलम क्रंग रोक ने लांगमानी कोक रोक चिंग खाना लाइ तीन बो है नो हाई नरक पाई नरक खनाई मान्नाय खरक सा एलम क्रंग नि लांगमानी कोक रोक ते बिनी एलम रोक नो ते चिंग सिलाइनाय सायमान लाइनाय हाइके पांडा पाया शाक जरानो खनाई दों दी लगी दों दी ते सारासा पॉइंट ऑफ मेगाहर्ट्स एफएम उज्जैनतनो ट्यून खाई दों दी गज अजरा स्टूडियो फाइशो पाक्या आंगार जे बिनोता तोंगनाई दिबोनी दामनी तामई सति थामची जरा आफाय देहाय गाव जरा ओ चेंगनानी बखा थांगनाय दिनिनी एलम ग्रंग पांडा हाइके करेनाय दि दिनिनी एलम ग्रंग पांडा ओ चिनी खरक्षा एलमनी बिनि लांगमानी कक रक ते बिनि एलम नुतै बबाहाय नुतै ब खरक्षा एलम ग्रंग हनजाका आमरक नुतै खनायनाय दि ओके ताबुक जों चेंगलायनाय दिनिनी एलम ग्रंग पांडा नाव

जनसे कथ सिलिए बतायो नि सब यंग सीतो ओ ओ हे नि सब सकथ सिया कोई बतायो

ओ कल जब तरो यो नहरे तमनो ई हो दे कल जब तरो यो हरी द्वारा बिरो जप्रू

0: आं जेब सरैन ताव हुमाखाय ए ए एं कावि तुंगनाय
1: ए
0: आं वाइन गुदु दमय रिसाब खाङाखै बोली लेमगुदि मा थांनाय
1: आसुकाय आसुकायनि खरां खाना तव खिलि जाखांगाय
0: ओ गोबां मा तुं दिबसारि जाबाय बाया वाइन खिलि मानि सम
1: ओ गनन ताबो बुइनो अम फुरुं गलां गाहामना
0: ताव आं रिसाबो ब्र ताव खनाय बुसुंनार थांनाय नगु रिसा तुंगा
1: ओ
0: गुजा जादु कलंदर माखै न
1: ओ
0: नगु रिसा बा
1: गनंगमते रोवा दवानसु ओ जादु कलिजा उलो बतंगथों
0: तंगथों आबुन मासुता तंगथों कलांग थानि
1: नंग ओ जादु कलिजा न ते फुआरना मुसुगना
0: फुआरना मुसुगना
1: एयम बगे न सरंगना फुरंगना ब मुसुगना के फोन फियाबा
0: सरनाय
1: करै ता
0: खारि सुनने
1: खारि सरनाय करै आं बगे न माने साइतक नै बरक करै ता हायादा न न कारिबो न नायंग नों नाम जायो अमाहाय रजाबनाय जत
0: मासा मुसुतुं
1: खरसे खरसुतुं
0: आखे आखे बानो जे जत बरक कोनो खलेरि जाबे मिया उरुन
1: थाय जाबे कक थाय खले
0: रजाबनाय ता थेबा दाक्ता आबाहिरुता ओ सरिन तामने तुं
1: ओ छाने
0: ताम भानो गथलि मानिया
1: जत मिया
0: आबाहिता
1: आ अंकाय नों तो खना माने उत्तरांगे नि वरसामनो दखिनांगे नि वरसामनो नों वायसे पनो आगरतला स्टेशन थादा थांकाउ को परीक्षार र नारख न ऑडिशन र ना हने नों खनाय दाम तेरो वायसे पन खनाय को
0: खनाय करी
1: सानाय करी कना ताबक तो ऑडिशन ना हारनाय आफरो त नों भाई ऑडिशन रे माननाय जरा तंखायता
0: सब साल बिलिसु गय रां पिसे पिसे खर्चों ग काय मुसे मानुयर मातों फयो तो ताबा कं तों फयोता
1: ओके सानाय ब करै जाना न न के फनो
0: सानाय
1: करै आउन मागन तंग न कोइला शहर नि रेडियो स्टेशन मे बसे चाल न न पारा ताब जे न ताब तों साइड रा तै साउ तों मनि
0: 25 किलोमीटर ने
1: कोइला शहर स्टेशन
0: बा गोबाय भगवान न गोबाय
1: अ न न र वाइसपन कोइला शहर स्टेशन न रुदार सब खासा
0: आनो सबसे वैसे साखौ थांजाग्लि आरो आबोलाय धर्म नगर थांगा पानि सारो गरो ग
1: आरो खेर साबखा
0: आरो लुगै हिसाबै खा सिजिं सरा ग तं केम मजागन मुआबो पेसा तोल
1: पेसा तो
0: आरो थांबोन पानि सागर थांबोन आरो सर्टिफिकेट दिउ एडिसन मिनिस्टर अफ सर्टिफिकेट दुमानि
1: अर साब मानि
0: बा साब मानि
1: नंकाय ताबो साना थांगा काय नों नों हुक रक बा खेत रक खाइन जाय दङ दाना दाय कोन हाननि नि लामा करे जानानै अब सों न न कबक नाय गल सिनि आकाशवाणी फायो इन ऑडिशन न रै माननाय सिनि आदों न थाङै सिं सायनाय दा हांकाय तिनि ततै जरा बकरै खा न न फायै आं तिनि जरा मा खान मय मालाय कक साना बागे कक साना जरा न मान बागे बेलाय खान पाइपलाय हामबाय
0: आन्दा सरिगा

जाबुं खोनालायदे खोनालायदे फायदि दाबुखौ जेराव जों सायमानलायनाय दाबुसो जेरा मानमानि गगबरक गगतमा बबाग्रा संसद प्रिभेनसन अफ इन्साल्ट टु नेशनल अनार एमेन्डमेन्ट बिल नैसाय नैजिदक पास ओंखा फेक मुंकार जाख भारत दे हामजा जाख भारत नैसाय ब्रैजि स्निनि नाहार मुंग मुख थां ख्लायनाव मन्त्रि बखरं नरेन्द्र मोदि बुस्कां ककते सालो नेशा मुक्त युवफर विकसित भारत संकल्प अभिजान चेंगै रुवान संसद पब्लिक एक्जामिनेशन प्रिभेनसन अफ आनफेयर मीन्स एमेन्डमेन्ट बिल नैसाय नैजिदक पास ओंखा थांनाय बिसिक चारो हास्टेव बेबागै नैरा ब्रै हुकबार हाथी हामक्राय तांबोतां यागो नाहारजाकाहनै साका हुकबार हामक्राय मन्त्री रतनलाल नाथ मन्त्री अग्रा प्रफेसर डाक्टर मानिक साहा खुवाय हांकरनि बायजालबारि रोंनख्लाव मिया संसजाक पान्दाव किसासक हामक्राय गोनां तांबोतांनो चेंगै रेखा बसं ब्रै कमिशननि चेयारपार्सन विजया किशोर राहतकर मिया आगरतलाव कक्तुमा थुमनाय रोगनि थुमो साखा उमर कासुगिया कायमा कासुनाव ब्रै कमिशन आलाय दाखाय साखथारि सामं तांगै दङ सालथां हांकर केरं सेबा आदं रगनि चेतनबाय आगरतला अक्जिलियम गार्लस रोंनक दै श्रीकृष्ण मिशन रोंनक मिया लिगेल लिटारेसि क्लाब चेंगै रोजाखा खोनानिसिमि हास्टे गोनाङै चेंजागानो लुकु लेखामं नैसाय नैजिस्निनि पुइला बेरेम नकनि मुंरेम नाहारमा सामंबुतां ट्रेननि जरा स्लाइजाखा 15650 नारांगि आगरतला एक्सप्रेस नारांगिनि सिमि तिनि हर दामचि सती थामचि आगरतला फाइना लामरवानो ग्लासगो संसाजा कमनवेल्थ गेम्स मिया हर भारतनि हिलिक दिसामाव लाभप्रीत सिंह चलारकनि सारा चिसा केजि बेदेगो रुपाइ मेडेल मानखाते सीमा कलिरमना ब्रिरकनि डिस्कास थ्रु ब्रन्ज मेडेल मानखा त्रिपुरा फुटबल एसोसिएशन बाय नायकलजाक अरनि उल्नै डिविसन लीग फुटबल बादायलायमुंनि मियानि थोंलायमाव त्रिपुरा पुलिस गोपलाय ओंखा मुस्कां दामनै चिप्रियो बेबाक हांकराव गोबां वाटै वायमानहिनै हजाक मुंरोखा नबार दैबार नायखौ दिनै सालनि तुंमारि साखाव 33 डिग्री सेलसियासनि गानागिनि दंगानो आसुक जरातै खोनाबायखा दाबुसुक जरा मानमानि ककबरा ककतमा बबाग्राव

रक्सा जादुनी रचाप करें बोखो रक्सा ताम करें चिनी लाइबो मागनां सारेंदा शुमुई ताम करें बो तामुई बो खना रखा चं खनाई मान का अंकाय ताबुक तिन्नी बागेले एलम करें पांदा और न चं पारे लाइसने और रचाप मुं खना लाई अंकाय हाई फनो चं जादुनी खोरंग पांदा वो ते बो खना ता तो रचाप मुं रक संग खना लाई ने अब है के नो दाम ने तामुई शोधी थाम जी जरांग नरक ने कचा रतों ने अंकाय चरा वो और रचाप मुं खना लाई चं एलम करें पांदा नले पारे लाइसने खनाई तोंग दी लोगी तोंग दी।

जोंगो जराव जादुनि खौरां पान्दाव खनातथोब रिचाबुं खनालाय दङ ते खरगनिनि हमजाकमानि हालखन बबो हायखे जों नायथथोब खेतनि बिमान जों ओ हालखरखौ बथमुं नथेरे खांखे जों तामरख खाय इमान आबरखन ते किसानार उपायां शेयर खलाय दङ आव जों गने काशा खाय थिया शाक थांनानि आबो किसानि खगया लांमानि थांसुं जराव हामा तं शाक जों हामा नावै दङ सालब्रुमनो जों जेफोर जों हामा थागै थाङोनो आफ्रुनो जों दिनै थैब्लांबो साखनो याकारि ग्लांगौ हायादा ओंखाय जों जे हामा नाहारै दं साक खरगसानो लगेरि थांनानै हामजागै थांनानै बिनि गाहाम हामिया जत्त' जरावनो जराव जों किसा मिसा लामगरावो जराव किसा मिसा जरा हामिया गोबां माबायो आबहाय जरा दखौ फानो जों बनो लगेरि थांनानै आब' किसानि गगिया आब' स्राबसानिबो गगिया हायादा ओंखाय जों गोबां मा बर' रगनि मखलाव गोबां मा हामजाक मुंनो थै गोबां मा खेय नुगौ हायादा दे जों बर' रगनि एक्सपिरियेन्स एबा बर' रग नुगैबो गोबां मा गग रग सावो फैयाबा जों बर' रगनि लांमायाव हामजाक मुं दामो आब'नो सिनानै नुनानै एबा जों नुगैबो सिवो हामजागैबो सिवो मालायैबो सिवो दुखु मानिबो सिवो आरो बाक्सा बर' फायो जोंनि लांमायाव फोरोंनानै बागै सिमिनो जों बर' रगनो सिनिनानैबो बेलायनो दुखु गैया जागायाव जों खरगसानाव हामा नाहारै दं साग गेबनो लगे

गोबांमा बारजा देबो चिनिलोगी भायो अंके जों आजरारगोबो जों साख सयनानि खरक जाते खरक साबाय सयै दंलायनानि आबो बेलायनो गक्तुगुना साना थांगा अंके जों जरा हामिया फियाबा सावै फाया जेफोर फनोबो सायावैनो फायो चिनि सागो बेमार सायावै फायमानि हायनो जरा हामियाबो जोंनो सावै फाया फियाबा जों आबोनो खरक नैनि कक बिदिबाय कक चाबलायो इसे आजरा हामियानो जों मेचानो नांगौ जों सिख्लानि लांमाव हंखायथ' जों लगिरि लायो जों खरकसाथाय खरकसानो आसो गोबां जलिमुंल' गोरै फियाबा नग नुखुं खामानि आगोलो हंखाखाय जों बारजातैयै जरा हामिया फनो लगिरि उइ थाङै मानखांखाय जों हामजाग नुनोसो जों हेल्दि एबा गाहाम हालक जों होनै मानो हायदोबा जों गाहाम हालक दैयै थैया साग थांनानि आब' आं थासिंगुबो सागा आब' किसानि क गया सोराबसानिबो क गया आब' जों जे दंमाबाय खाग' जमै दंनानि चिकन चिकन दंथक दंथक मुंग' मोनै मुं रुदुबनानि एबा चिकन चिकन मैदुनि मारि रग' दंथक मुं रुदुबनानि आब' बेलायनो कक दुगु दाबुंनि अजराव कम्पिटिसननि जराव हामजाग मुं गायसा बेलजा खायगे नुगौ गोबां मा नग नुखुं रग' एबा गोबां मा हालक रग' आगिनि जरानि हामजाग मुं बाय दाबुंनि जरानि हामजाग मुं आब' बेलायनो फेलाय जाखेबो नुगौ तामनि हिंखाय आगिनि जरा रग' हंखाय नायथक सित्रा जों खरकसा बरक न तमुंन थैया सागनि बागै हामा नाहारै दं सागनि बागै हामजागै थांनानै गसि खाहांखे बा जङै नाहार मानि यागुल' बाक्सा दाबुक गोबां कुंन नायथक सित्रानि दैबो हामजाग मुं बायमानि गोबां मा नुगौ फियाबा जों गोबां मा जला बोरै खरकनिनि बाक्सानि खुगो जों खोनाव आगि अमतै दंमानि दाबुक नों अमतिं थांगा एबा आगि बेलाय नायथक दंमानि दाबुक सित्रावै थांगा फियाबा मोनसुगैदे नाय जेफुरु नों बन नायथक नुखा आफुरु बिनि नग नुखुंग' बन गाहामखाय नायगलि दनि जाग' आबुनि बागै नायथग' ओंखाय दाबुक ब' नों बाय दंग' हंखाय नों बन गाहामखायै दा दनिखाना आबुनि बागै दा ब' सिद्राय थांखाना आबो हाय कक रग हायो हायादोबाना तामनि हिंखा जों आबोनो मैदोमा नारोखथाय जों जेफुरु सिख्ला सिख्लिफोरु जों दंग' आफुरुथ' जों बुमा बुफानो नायगलै दङ हायादाना ओंखाय जेफोर नुखुं खामानि आगोलो खरकसा बोरै फानोखा खरकसा जाला फानोखा जों मावान सुखथाय आजरो रग' बारजातै सामुं खालायनि बागै ओंगै मानो जों सामुं खालायगा हांखाय अट'मेटिक जिनि हायनो फानो जे जिनि नायथक ओंखाय स्राब जानि बागै फैयाबा खा गाहाम वानसुमुं गाहामसे जोंनो लगिरि दलांगौ थैया साग दमुंनो गेबनो बोखाबाय हामजाग सुबै थांनानै हिनि कग्रे खांखाय बिनि नायथक सित्रा बेबागनो नों मा गसिनाय आबोनोसो जों सय सय हामजागै थांसुखनाय ओंखाना होनो गसिउ माना हारो हायादा ओंखा फायदायाव जरावहायनोहाय रोजाब मुंखाना लायनो दाम होन खोनाथक रोजाब मुं नरकनि बागै अजराव खाख्लाय नरक जतन अरजाब मुंन खोनाथक जागानो खोनाय दंदि लगि दंदि

जों खनालाय थंगो जादुनि खरां पांदाव खनातोतोब रिचाबुंग ते हमजक मुंगनि कब्रक जों किसा सालाय तंगलाय मानि हंगाय आजे मानसा गांग जे चुकते हनक न सांखना रखा गाय न रबो जतनो साइमानो जों जतनो आचिनि हमजक मुंगनि हालक न क्राक खाय काहाम नायत तोके तो न हंके जों तम खलायनि नांग अब जों जतनो साइमानो हाइफनो जों ताबुनि ओ पाइलेनि जराव जों खरक्षा ते खरक्षा बाय बुजि लायना नायां थानि एबा जरारि मान लायां थानि आरो रगनो गोबां कुकचिनि हालक न बाय माने नुजागौ दे दाबुकनि अ डिजिटलनि अ जराव जों बर' रग हामजाक मुंनि कुबै हामजाक मुं बबाहाय आबजों साइमानिया एबा

कन्फ्युसन अगे थाङ्गो हया दा आजागा रगो नुचिनि हामसा पुनि हालोग्रुङ किसा मिसा तेरे मानि एबा सित्रा मानि नाइथक यां मानि नगो फ्याबा आबो रक्नो नाइथक रि थानि हामसा पुनि हालोग्नो काहाम खाय नाइको लि तलांग थानि ब बेबाक नो चिनि थानिसि चिनि थानि औ नो आबो बेबा खाया दा गय आ पाइथागो रचा पंखना लाय जों चिनि दिनि नि जादोनि खरां पान्दानो पानि लायसिने जतन नो हामबाय सालब्रुम नो लगेरि तमनि बागे गय ओ रचा पंखना लाय नो जों चिनि दिनि नि जादोनि खरां जाबनो पान्दानो पाइरि वै जों खोनाथ' खरां पान्दानो जों जेंलायनाय हिंखा जराव अरजाबं नरकनि बागै

के मोटर की बाइंडिंग करा के आए। पूरा नहीं है पर हमरे घर में इतना भी बस हम ही बोल पाते हैं। फुल इंग्लिश बोल के बताए। आई लव यू।

0: कितनी गोली लगी? बस एक गोली पे रोता है।
1: रोना बंद कर।
2: मीठा मिला कोई, कड़वा मिला लम्हा लम्हा।

मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दी। देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और समुद्री क्षेत्र की विशाल संभावनाओं का दोहन करने के लिए राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को भी स्वीकृति। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को अगले 5 वर्ष तक जारी रखने को मंजूरी दी। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर निर्मम कार्रवाई के लिए पाकिस्तान की निंदा की। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर, राहत और बचाव कार्य जोरों पर। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार, जैस्मिन लंबोरिया, अरुण

0: दीप्ति चौधरी और अंकुश पंघाल फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना को 5,070 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है।
1: प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना में जितने वाटर बॉडीज हैं, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो, उन सब का उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है उसका अप्रूवल लिया गया है। 102 गीगावाट यानी 1,00,000 मेगावाट की कैपेसिटी पोटेंशियल है भारत में।
0: मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि इस योजना में अपतटीय अन्वेषण मूल्य श्रृंखला से जुड़े कार्य शामिल हैं।
1: समुद्र मंथन भारत में ऑयल एंड गैस के एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन का प्रोग्राम है। 84,000 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम है। इसके दो कंपोनेंट है बड़े, तो पहला कंपोनेंट है ऑफशोर सीज़मिक डेटा एक्विजिशन, 28,000 करोड़ रुपीस का ये प्रोग्राम है। दूसरा कंपोनेंट है एक्सेलरेटेड ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम, ये 43,200 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम।
0: सूचना और प्रसारण मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने को भी मंजूरी दी गई है।
1: पीएम किसान योजना को और आगे एक्सटेंशन दिया गया है और इस प्रोग्राम में देश के किसानों को क्रॉप साइकिल के हिसाब से बेनिफिट दिया जाता है। साल में 3 बार 2,000 रुपए इनकम सपोर्ट दिया जाता है। इसमें पिछले 5 वर्षों में क्यूमुलेटिव डिस्बर्समेंट अभी करीब करीब 3,10,000 करोड़ रुपए का बेनिफिट किसानों के पास जा चुका है।
0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि को मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे प्रत्येक प्रतिभाशाली युवा को उत्कृष्टता का स्पष्ट मार्ग मिलेगा।
1: कम्प्लीट एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लिया जाएगा, स्टेडियम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो, न्यूट्रिशन प्रोग्राम हो, मेंटोरशिप हो, उन सब के ऊपर एक बहुत केयरफुली क्राफ्टेड प्रोग्राम बनाया गया है। 29,000 करोड़ रुपीस की ये स्कीम है 5 ईयर्स के लिए और ये सीधा वीविन करेगी ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और आगे कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने वाले हैं 2030 में भारत में, उन सब के साथ ये वीविन करेगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि समुद्र मंथन योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और विशाल समुद्री क्षमता का दोहन करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना से जलाशयों और अंतर्देशीय जल निकायों के अभिनव उपयोग से देश की स्वच्छ ऊर्जा क्षमता का विस्तार होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने कहा कि खेलो इंडिया योजना का विस्तार और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि से देशभर के युवा एथलीटों को बेहतर प्रशिक्षण, आधुनिक सुविधाएं और अपनी प्रतिभा को निखारने के अधिक अवसर मिलेंगे। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने को मंजूरी दी गई।
2: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज फिर विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गई। हालांकि शोर शराबे के बीच लोकसभा ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 को बिना चर्चा के पारित कर दिया। इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के विलंबित पंजीकरण से संबंधित प्रावधानों को अधिक सख्त बनाना और इन घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करना है। विधेयक में यह भी प्रावधान किया गया है कि विलंबित पंजीकरण की अनुमति देने से पहले नामित प्राधिकारी को संबंधित जन्म या मृत्यु सूचना की प्रामाणिकता का सत्यापन करना होगा। इस सप्ताह संसद ने दो महत्वपूर्ण विधेयकों लोक परीक्षाएं अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 तथा राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को पारित किया।

0: अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को मजबूत करने में संयुक्त राष्ट्र का लगातार समर्थन किया है। लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री जयशंकर ने कहा कि ये समर्थन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की 8 बार की सदस्यता में भी दिखता है और वर्ष 2028-29 के लिए अगली उम्मीदवारी की औपचारिक घोषणा भी की जा चुकी है। सरकार ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी योजना के अंतर्गत आज तक किसी भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का कोई बकाया नहीं है। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने VBG रामजी योजना को अधिसूचित कर लागू करना शुरू कर दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आज उम्र कैद की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने दलीलें सुनने के बाद सभी 5 आरोपियों को सजा सुनाई। अदालत ने इस अपराध को समाज को झकझोर देने वाली बेहद गंभीर घटना बताया। इसी महीने की 13 तारीख को अदालत ने हुसैन और 4 अन्य को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी पाया था। दंगों के दौरान अंकित शर्मा पर भीड़ ने हमला किया था, बाद में उनका शव नाले में मिला था। पश्चिम बंगाल में विशेष कार्य बल के आतंक रोधी प्रभाग ने मोहम्मद हमीम मंडल उर्फ हमीम फिगो को आतंकवादी नेटवर्क से कथित संबंधों के आरोप में बर्धमान से गिरफ्तार किया है। आरोपी को बर्धमान के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने आरोपी को 14 दिन के लिए STF की हिरासत में भेज दिया। हमीम पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के संपर्क में था और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों में शामिल था। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथा कथित चुनाव पाकिस्तान की नीतियों को सिरे से खारिज किए जाने का प्रमाण है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि पाकिस्तान द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में निर्दोष नागरिकों के खिलाफ लगातार दमनकारी कार्रवाई की जा रही है।
2: पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान के तंत्र पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण नागरिकों के खिलाफ लगातार निर्मम बल रूथलेस फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है और इस सख्त कार्रवाई में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और कई एक और लोग घायल हुए हैं। एक हिंसक शासन का सामना करते हुए वहां के लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन से गैर कानूनी हत्याओं की स्वतंत्र जांच की मांग की है। हम आग्रह करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान की हरकतों की बारीकी से जांच करनी चाहिए और उसके अत्याचारों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।
1: श्री जायसवाल ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा हैं। उन्होंने भारत के सभी साझेदार देशों और हितधारकों से इस क्षेत्र के लिए सही नामकरण का उपयोग करने का आग्रह किया। नेपाल में अधिकारियों ने भारत से सटे सप्तरी जिले के कुछ हिस्सों में अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू लगा दिया है। सुनसरी में सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में प्रदर्शन शुरू होने के बाद कर्फ्यू लगाया गया। सुनसरी, धनुषा और सिराहा जिलों में कुछ हिस्सों में पहले से ही कर्फ्यू लागू है। सल्लाही जिले के अधिकारियों ने सीमा पार से नेपाल में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए वैध पहचान पत्र रखना अनिवार्य कर दिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। ओडिशा में लगातार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि निचले जिलों में बचाव और राहत कार्य जोरों पर है।
3: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है क्योंकि महानदी और उसकी सहायक नदियां कई जगहों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ का पानी बढ़ने से सैकड़ों गांव, सड़कें और हजारों हेक्टर खेती की जमीन डूब गई है और 15 जिले इसकी चपेट में आ गए हैं। हीराकुद बांध के 22 गेटों से अब बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी नुकसान का जायजा लेने के लिए कल बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर और केंदुझर जिलों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे, जबकि एहतियात के तौर पर भद्रक के सभी स्कूल कल बंद रहेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।

0: गुजरात से हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में आज सुबह से मूसलाधार वर्षा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है।
1: सूरत जिले के अंबिका में आज पूरे राज्य में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा भरूच, नवसारी, डांग, आनंद और खेड़ा जिलों के कई इलाकों में भी आज मूसलाधार बारिश हुई। निचले इलाकों में जलभराव के कारण राज्य राजमार्गों और स्थानीय मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ है। स्थिति को देखते हुए राहत और बचाव कार्यों को बड़े पैमाने पर तेज कर दिया गया है। आज सुबह से ही 8,300 से अधिक लोगों को सुरक्षित आश्रय में पहुंचाया जा चुका है। इस बीच भारी बारिश की संभावना को देखते हुए एहतियाती तौर पर सूरत, बनासकांठा और मेहसाणा सहित कई जिलों में कल भी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: इस बीच मौसम विभाग ने कल गुजरात में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, केरलम, माही, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण कर्नाटक के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। इसी तरह का मौसम उत्तराखंड और पश्चिमी राजस्थान, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम में भी रहने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बिजली चमकने के साथ आंधी तूफान और तेज हवाओं की भी संभावना है। दिल्ली में कल तेज वर्षा हो सकती है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज अस्मिता डे ने जूडो में स्वर्ण पदक जीत लिया। 48 किलोग्राम वर्ग में उन्होंने पहला स्वर्ण पदक देश के नाम किया। इस बीच भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार, जैस्मिन लंबोरिया, अरुंधति चौधरी और अंकुश पंघाल ने फाइनल में जगह बना ली है। प्रीति ने महिलाओं के 54 किलोग्राम सेमीफाइनल मैच में जाम्बिया की कैथरीन मुआपे को हराया। जैस्मिन लंबोरिया ने 57 किलोग्राम और अरुंधति चौधरी ने 70 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में जगह बनाई। वहीं अंकुश पंघाल ने पुरुषों के 80 किलोग्राम सेमीफाइनल में कनाडा के जोशुआ ओफोरी को मात दी। भारत 4 स्वर्ण, 10 रजत और 4 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में 10वें स्थान पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दी। देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और समुद्री क्षेत्र की विशाल संभावनाओं का दोहन करने के लिए राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को भी स्वीकृति। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को अगले 5 वर्ष तक जारी रखने को मंजूरी दी। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में उम्र कैद। और राष्ट्रमंडल खेलों में अस्मिता डे ने जूडो में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।